0: यार क्या बात है नछत्र गिल साहब भी अपन ना कुछ आवाजा की गल करते हैं मनमोहर वाल साहब हो गए नछत्र गिल की भी आवाज यार वाह क्या कमाल है याद है तुम्हें गाना इन्हों का तारे की लोए तो मेरी जान आप दोए कदे कट्ठे नहीं हो होए किन्ना चेर हो गया वो भी बड़ा यार प्यारा गीत सी सो प्रोग्राम है पंजाबी ना तो गीत सिंह जी थोड़े मन पसंद लग रहा नंबर है अपना 9056733337 9056733337 अपना एक एक फोन नंबर है तो गल्लां बातां थोड़े नाल हो रही ने एक मैं कैलेडन मित्सुबिशी का नंबर भी जरूर देव जे तुसी वधिया गड्डियां लैणियां ने ना 10 साल की वारंटी 10 ईयर्स नहीं तो गड्डियां की 10 साल की कितने वारंटी मिलती होंगी है कैलेडन मित्सुबिशी के जीवन सिद्धू भाई जी ने तुसी कॉल कर लो 6476782754 6476782754 कैलेडन मित्सुबिशी ने तुसी जरूर कॉल करो एंड जीवन होना को टॉप दी डीलां लै लवो राजवंत कौर ने जदों थोड़ी इंश्योरेंस देख ली तो राजवंत ने थोनों ऐसा डिस्काउंट लैके देना तुसी भी सोचते रह जाओगे कि बल्ले यार ना भी एडे वे वे डिस्काउंट गड्डिया की इंश्योरेंस के उत्ते सो राजवंत कौर 25 तो वध कंपनी नाल डील करते हैं तो 30% तक का डिस्काउंट लैके देंदे थोनों 6476744735 नंबर है राजवंत का 6476744735 राजवंत कौर साडे नाल ग्रैंड होम फर्नीचर तो सुख भाजी एक बार फिर जुड़े आ ते ग्रैंड होम फर्नीचर ते बहुत ही जबरदस्त सेल इस वीक चल रही है जी सुख भाजी जी सुख भाजी वेलकम
1: बहुत शुक्रिया धन्यवाद नवी भाई जी बिल्कुल इस वीकेंड दे उपर परिवारां ने किसी भी तरह की फर्नीचर की बाइंग करनी है ते वीकेंड दे उपर फ्राइडे वाले दिन लाइव लोकेशन प्रोग्राम चलना पंजाबी लहरां दा ते जिन्ने भी परिवारां ने साडे कोल पहुंचना तोहफे ते डिस्काउंट तुसीं अपने घर लेके जा सकदे हो ते नाल दी नाल जिन्हां परिवारां ने रिकलाइनर सोफा सेट लैणा अपने फैमिली रूम दे लई चॉकलेट कलर दा लैदर दा रिकलाइनर सोफा सेट 3 सीटर सोफा 2 सीटर लफड़ 4 रिकलाइनर दे नाल जी हां फुली लोडेड 4 रिकलाइनर दे नाल लैदर दा सोफा सेट

0: बड़ी वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

आगाज खूबसूरत सवेर का, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्कान सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सन सुन रहे हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरपाओ निरवैर रहेगा, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे, मुहब्बत जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी। तो एक बार फिर तो एक खिड़मी जी धुप्पे एक सुरमई सवेर के नाल तुसी शुरुआत कर चुके हो अज के दिन की। और पीयरसन एयरपोर्ट का ट्रैक 6 बिल्कुल पद्धरा नज़र आ रहा जिते मैं उत्थे तुसी और असी इस समय डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राही जुड़ चुके हैं। इस समय तुसी सानू सारनिया लंडन किचन वाटलू कैम्ब्रिज तो जिथे एक्सक्लूसिविटी का यानी कि सिर्फ ए एम 530 फ्रीकुएंसी ही चलती है सुन रहे हो उत्थे सानू तुसी सुन रहे हो। साउथ विच नाइग्रा फॉल तो लैके तुसी जो डनविल तक और डनविल तो लैके हैमिल्टन तक ब्रैंडफर्ड तो लैके तुसी ओकविल बर्लिंगटन होंदे हुए सानू एंटायर जी टी ए तुसी सानू स्कारब्रो मार्कम नॉर्थ यॉर्क ईस्ट यॉर्क तो अलावा ईस्ट दे विच सानू तुसी कर्टिस बॉमनविल हैम्पटन टपते हुए न्यू कैसल तो लैके तुसी बेलविल दे एरिए तक सुनते हो और नॉर्थ विच सानू तुसी एंटायर ब्रैडफर्ड तो लैके सानू तुसी न्यू मार्केट और न्यू मार्केट तो लैके तुसी सानू जो 400 दे उपर बैरी तो क्रॉस करते हुए नॉर्थ विच सानू तुसी सुन रहे हो। इस समय ग्रैवनहस्ट दे उरां तक 400 दे उपर ओरेलिया दे उपर 400 दे उपर माफ़ी चाहूँगा 11 दे उपर जिहड़ा हैगा सानू तुसी सुन रहे हो इस समय जो ग्रैवनहस्ट तक विंगम तो लैके जो टोबरमरी तक 10 हाईवे के उत्ते तो नॉर्थ विच सुने जाता यानी 1000 किलोमीटर का एरिया। इस तरह अमेरिका के सानू तुसी बहुत दूर तक अंदर अमेरिका के सुनते हो वाशिंगटन में जाते हुए तुसी रस्ते चलाई रखते हो 90 के उपर चलते हो ईस्ट और वैसट के विच तुसी सानू बड़ी दूर तक 90 के उपर सुनते हो हाईवे जो मेन है 90 इंटरस्टेट हाईवे कहते जिन्हों बहुत बहुत शुक्रिया सारे 400 सीरीज़ हाईवेज़ ने जिन्हें भी जी टी ए सुनते हो। इन्नी गल मैं क्यों कहना हूं कि जो कोई बिजनेस सुन रहा वो अपने आप को प्रमोट करना चाहता तो बिजनेस फायदा लूगा ए एम 530 का वो थावान जिते थोड़े सोशल मीडिया फोशल मीडिया लटरम फटरम कुछ भी काम नहीं करता कोई फ्लायर कोई पत्र पत्रिका कुछ नहीं करती उत्थे एम 530 डिजिटल जी फ्रीकुएंसी है थोड़े क्लाइंट थोड़े तक लेके आती है। इन्हों सारे शहरों के अराउंड 15 लाख लोग रह रहे हैं जिते सिर्फ ए एम 530 चलती है प्राइम टाइम यानी कि जो तुम सारे निकले हो रश आवर है सवेरे सवेरे सारे फ्रैश ने इस शो को सुनते हैं वो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहेंगे। मैं एक अवेयरनैस के तौर पर गल कर रहा तुम अपने बिजनेस को लॉन्च करना लोगों के लेके जाना तो मेरे को 10 नाँ ने 20 नाँ ने इस शो राही तुम कॉल कर लियो कई चार पाँच साल मेरे एडवरटीजमेंट करद हो गए हैं तो तुम मैं कॉन्टैक्ट करना अपने बिजनेस को फेस देना चाहते हो फेस वैल्यू देनी चाहते हो मार्केटिंग वैल्यू देनी चाहते हो 416-518-3200 416-518-3200 नंबर है 416-518-3200 तुसी मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस अज के शो के मैं हाँ अमरदीप सिंह बेनीपाल

0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜੋ 1200 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਯੂਨਿਟ 22 ਮਿਸਿਸਾਗਾ 416-804-2015 416-804-2015
1: 3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: करता आपा एड़ा वड़ा एना सोना ले लिया हुन अप्लायंसेस भी हाई एंड ही लेने हैं
4: हाँ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस है ना फ्रिज स्टोव डिशवॉशर वॉशर एंड ड्रायर एलईडी टीवी सब एथों ही लवांगे एना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनिया कोई भी अप्लायंसेस खरीदो पेमेंट भी 6 महीनिया च करनी है वो भी बिना किसी ब्याज दे होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करनगे कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828 905-450-2828 2828

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजरिया होएगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। सुखी निज साहब वतनों दूर तुहाडे लई अगे चल के प्रोग्राम पेश करनगे और मनप्रीत जी हिंदुस्तान दीआं खबरां भी तुहाडे नाल सांझीआं करनगे। सब तो पहला छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है। अज 6:17 ते सूर्य सिंह आया, 8:28 ते चले जाना। लगे हथ मामे भी सुन लो, चंद्रमा चंदा मामा सवेरे 4:33 ते आया ते शाम नू 8:09 ते जाना इन्हे। अज दिन साफ आ, सजे खबे मुंह जा चक्के तां नू दे लियो उत्ते होएगा। ते जेडे पहला जी ब्राह्मण ते श्राद्धां वाले उकरियां दे चंदा मामा रात को आता है, वो हमारा ये है, सूरज हमारा देवता है। खैर अज सूरज सिंह चमकदा रहेगा, 29 डिग्री तापमान। कल चखड़ चोले थंडरस्टॉर्म मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, तापमान 29 डिग्री। थर्सडे 28 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, हल्की जी बारिश। और फ्राइडे 26 डिग्री तापमान रहेंगे, सूरज चमकदा रहेगा। सैटरडे 27 डिग्री सूरज चमकेगा। संडे सारा दिन बदलवाई, सारा दिन बारिश, तापमान 26 डिग्री। 2 बजे तक साढ़े स्टूडियो के नंबर रहेंगे 905-799-0900
1: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care.
0: I am Dave Tatla and you are not. अपनी कम्युनिटी लई खुशखबरी, हीलैक्स वेलनेस फिजियो एंड रीहैब सेंटर खुल चुका है, जिथों तुसी फिजियोथेरेपी, मसाज थेरेपी, कायरोप्रैक्टर वर्गीआं सेवावां प्रोफेशनल्स वल्लों दित्तीआं जांदीआं हन। इह तकरीबन सारीआं इंश्योरेंस कंपनीआं नाल खुद डील करदे ने। काउंसलिंग सर्विस भी अवेलेबल हन। हीलैक्स वेलनेस फिजियो रीहैब, 10930 गोरवे ड्राइव, यूनिट सी X1, गोरवे एंड कंट्री साइड दे कॉर्नर ते। ज्यादा जानकारी लई प्लीज कॉल 905-913-5256, 913-5256, 913-5256। स्पोर्ट्स के खेतर च कल 7 महीने च पंगा पै गया, और पंगा एह जा पिया अद्धा पौना घंटा चलता रहा, हार के न्यूयॉर्क जेडे अंपायरां दी टीम उत्थे वे संदेश भेजा, फिर उन्होंने दस्या की होया की नहीं होया। खैर ब्लूज वाले फिर भी 2-1 दे फर्क नाल जित गए, और अपने इत्थे $100 मिलियन प्लज किया है साड़ी सेंटर सरकार ने, ओटवा की सरकार ने, शिपिंग कॉस्ट विद इन कैनेडा जेडे टैरिफ हिट हुए हैं इंडस्ट्री के, जो शिपिंग कॉस्ट वधिया उन्होंने पैसे दिते गए ने। मोन्ट्रियल का एक व्यक्ति उसनू पुलिस ने चार्ज किया है, साडा प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी अगेंस्ट जानों मार दी धमकिया दिता सी। एक होर खबर है, कहिंदे जी साडा मार्क कार्नी छुट्टियां दे के चलिया, अज फिर की हो गया, छुट्टियां दे चलिया, कोई माड़ी गल तो नहीं है, आपदे नूं रीफ्रैश करन चलिया, फिर की हो गया। अज सारा दिन देखो अपने देसी अखबार वाले पूछा चक चक के कहणगे, वो छुट्टी दे चलिया इधर टैरिफ दा रौला, उधर छुट्टी दे चलिया टैरिफ दा रौला। यार उहदे बंदे ही इन्ने वधिया रखे हुए मूहरे, आप होवे ना होवे उहदा काम फिर भी चलता रहना। खैर वह जिहड़े जाली मीडिया वाले उन्होंने मूंह बंद कर लिया, एक होर गल दस दिंदे आ। अज दी तरीक उपर लिबरल 13 पॉइंट उपर जा रहा है कंजरवेटिव तो, पीयर पॉल तो 13 पॉइंट। Go figure that out, my friend. Are you ready? Ikka Junction Lay, 647-429-4040. Catering karoni hai choti vade function lay, no problem. 647-429-4040. Live cooking karoni hai kare, no problem. 647-429-4040. Tusi inare banquet hall ya lounge vich choti vaddi party karni hai, no problem. 647-429-4040. 647-429-4040. 647-429-4040.
2: 40 साल हो गए अपने ब्याह नु, फिर किथे सेलिब्रेट करन दा इरादा है?
3: मेरी मन्नो आपा पिंड ना चलिए।
2: धर्म नाल आ ता तू मेरे मन दी गल ही कहती है, पर इन्नी छेती टिकटां कित्थों मिलणगियां?
3: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल तो अपने साथ वर्गे ही साथ है उन्हां दा, अपने क्लाइंट्स दे नाल पिछले 40 साल तो
4: बेदाग सर्विस। गिल इंटरनेशनल ट्रैवल,
3: क्वालिटी सर्विस, वधिया रेट्स ते बेस्ट डीलिंग है उन्हां दी पहचान। इंडिया पाकिस्तान या दुनिया दे किसी भी कोने च करना होए ट्रैवल,
4: सर्विंग कनाडा नेशन वाइड।
3: 905-671-8400 और 905-796-8800 और विजिट giltravels.ca।
0: पंजाबी बाय नेचर ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਕਨ ਇਵੈਂਟ ਸਪੇਸ ਇਨ ਮਿਸਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲੀਗੈਂਟ ਬੈਂਕਵਟ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਮਨਾਓ ਜੀ। ਫੂਡ ਨੰਬਰ 1, ਸਜਾਵਟ ਨੰਬਰ 1, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। 100 to 1200 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਆਈਕਨ ਇਵੈਂਟ ਸਪੇਸ, 3rd 87 ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਇਨ ਮਿਸਾਗਾ। ਲੱਕੀ ਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਮੋਨੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾ ਲਓ 905-965-2631। ਮੋਰਗੇਜ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਨਿਊਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਬੀ ਸੀ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਏ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਲ 905-460-9099। ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, 2155 B ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਨੀਅਰ ਟੋਬਰਮ ਯੂਨਿਟ 32। 905-460-9099-905-460-9099-460-9099 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨਾ ਪਲਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।

0: रात आमे छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 साल तो तुहाडी सेवा विच।
0: भैया ते कारा दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
1: कॉल करो 905-874-9878।
2: बंबा गया मैं जिथे जावा मुंडे कहंदे बंबा गया।
3: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारे तो सोना हो भी।
4: बस इनी गल हो, कार

0: For advertisements and information,
1: साडे हेड ऑफिस नु कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551
2: चलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
3: टुडे विच लाइव गलबात करने लई हुणे कॉल करो 905-564-6444
2: 905-564-6444
3: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो
4: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तो करवांदा यार
5: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
5: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
6: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
5: 416-509-1509
6: और विजिट insuranceforyou.ca
3: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उहनां नूं सुणन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखने वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहते लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहते हो तो उत्ते क्लिक करो या फिर अपने IPTV बॉक्स के उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो उत्ते तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है ता तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381

0: and Cellular Point present AmiWeb live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valley, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एम 520 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं कनेक्ट करो उत्थे तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7।

0: Days per days.
1: For advertisements and information, saade head office nu call karo 416-725-2551 416-725-2551. कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
4: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one get one free every day sure 10 to sham 7 baje tak on dine in and take outs. Maza lavo Sunday nu paratha plate, Monday मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूसडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा। ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते। डाइनिंग, टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल। कॉल एट 905-794-8111। सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली